সুস্মিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী।

FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है, लीजिए अब सुनिए चिंतन।

ब्रह्मास्मि उपनिषद का महावाक्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो आत्मा ब्रह्म है। कहने का अर्थ यह है कि हम सभी मनुष्यों में चेतना का पुंज है आत्मा, और यह सत्य चित्त और आनंदमय है, यही परमात्मा है। लेकिन इस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव मनुष्य को तभी होता है जब वो अपने पूर्व संचित गुण, संस्कार और कर्म यानी प्रारब्ध पर धैर्यपूर्वक मनन करता है और सात्विक जीवन निर्वाह करता है। अहम ब्रह्मास्मि ये अभिव्यक्त करता है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अंदर निहित होती है और हम सभी मनुष्य सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सत्य चित्त आनंदमय को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक ये है कि हमें संसार के मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या और असत्य को अपने जीवन से हमेशा दूर रखना होगा। हमें अपने आत्मगुणों को निरंतर परिष्कृत करना होगा, तभी हम हमारे अंदर स्थित दिव्य तत्व आत्मा के चैतन्य स्वरूप यानी ब्रह्म को अनुभव कर सकेंगे। संसार मायावी है जो अज्ञानवश मोह से हम सभी को आकर्षित करती है, अनेक रूप और रंगों में हमें भटकाती है, इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो मनुष्य विवेक से माया के मोह जाल से अपने को मुक्त रखता है वो आत्मा के दिव्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की अनेकता विचलित नहीं कर पाती। इसके लिए हमें निरंतर सात्विक मूल्यों के आधार पर कार्य करना होगा। विचार, शब्द और कर्म से जीवन निर्वाह करने पर हम अहम ब्रह्मास्मि के महावाक्य को चरितार्थ कर सकते हैं। आइए आज के दिन का शुभारंभ अपने आत्मिक गुणों के विकास और अहम ब्रह्मास्मि को आत्मसात के संकल्प

0: इसी देशभक्ति गीत के साथ वरना कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाई और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती की बात। प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का।

दैनिक सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे प्रभा ठाकुर से काव्य पाठ। दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा ठीक सुबह 8:15 पर।

सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और सुबह 11:00। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा ठीक सुबह 9:30 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और द्वितीय प्रसारण सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा ठीक शाम 7 बजे।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात हमारा वारा हमरे किसान भाइयों ने बोने में विनी बेनू राम राम राम राम। किसान भाइयों देखो आ हवा नो टेम है, हवा नो टेम में अपने जी खेतर नो काम है ई करवो है, क्योंकि आ नो तप्पो भी चाली रे थको है। इन्हीं में खूब गर्मी पड़ी रही है, खूब लो भी चाली रही थकी है, तो अपने ने हवा नो टेम में जो वक्त टाड़ो मौसम रे ने ताप नहीं नकरे एनी वक्त जी भी खेतर नो काम काज है ई अपने ने कर लेव जुए, क्योंकि किसान भाई आज भी खेतर में साफ सफाई वगैरह है, जुताई वगैरह है, मैं रहेगी हूँ तो आज समय है।

0: हवाई ना हाजनी वक्त जे वक्त वधार लू नहीं पड़े ने गर्मी नहीं पड़े एवं समय में अपने ने जे भी खेतर नु काम खास है ई करवो है ने पसे जिम जिम दाड़ो पड़े इन पासो आ लू भी सली रही थकी है गर्मी भी खूब पड़ रही थकी है तो गर्मी ने भी बंदोबस्त अपने करे ने पसे जे भी खेतर नु काम खास है ई करवो है। किसान भाइयों खेतर नु काम खास तो अपने करवे से पर एनी हाटे आ गर्मी ने भी ध्यान राखव खूब जरूरी है। आना दाड़ा में खूब लो सैली रही है ताप खूब पड़ रो थको है तो अपने ध्यान राखी ने पसे जी भी खेतर में काम काज ही करव है। देखो किसान भी अपने तो खेतर में भी काम काज करव पड़े पर खास आनी बात में ध्यान राखो है जे वक्त अपने इमने तेमने गया ने लू लगी गई एवं थी गयु हो एनी वक्त अपने लू थी गई बचाव जरूर करवो है। किसान भाई देखो आप खेती वाली तो बात हर रोज करो पर आज जरा आ लू थी कि बचाव एम उपचार हुए ये बात कर ले कम के किसान भाई ने तो एमने तो एमने खेतर में जाओ पड़े ने उतरे वाले भी सैलरी थे कहीं ए भी जाओ पड़े तो भाई कि अपने बने नकरी लू लगी गई छू अपने बुखार आ गयो उल्टी थी रही है दस्त थी रही है एवं महसूस थी रही थको हूँ तो देखो घरेलू उपचार भी अपने कर सका जिम के नींबू पानी है तो ये आखो दड़ी पीतु रहो है। इन बाद आज भी केरी में जूस एवं भी पीते रहो खास कर काशी केरी की चटनी वगैरह है काशी केरी है एने पूटे जी भी प्याज है हर घर में अपने जी प्याज है तो मिली जाए तो किसान भाई आ देसी उपाय है प्याज है नींबू ना रस है खाटी केरी की चटनी है एवं अपने खातु रहो है ने एनी हाथी आ न तप्पा भी साली थको तो अपने खूब खुद अपना अपने गर्मी थे कि बचावा बदले सत्य की पहले बचाव अच्छो तरीको है अपने बॉडी ने अच्छो तरीका थे कि इन हाइड्रेट राखा ने खास करे ने जी खूब फल है ये खावा है जिनके आना मौसम में तरबूजे हैं खरबूजे हैं पपीता है खीरा है जी भी सीजी है तो अपने वधार करीने वधार सेवन करव है। किसान भाई एने हाथे एक अपने कट्टी छाश वगैरह है अपने तो ग्रामीण किसान भाई है हर घर में मिली जाए तो कट्टी छाश है इन्हें भी वधार करीने वधार सेवन करव है ताकि अपने लू थे कि बची सक पास अगर वधार एवं उल्टे दस एवं अपन बुखार महसूस थी रो थको है तो डॉक्टर पर जाने इनो इलाज करावो जरूरी है ताकि वधारे बढ़ी नहीं जाए अने वात नो ध्यान रखो किसान भाई ने इमने तो नावड़े फलदार बोदे वगैरह लगाड़ी थक है इन्हें हाथे जो भी सब्जी वगैरह है तो समय समय में ते हाजने वक्त आपाए पातु रहो है ताकि जी पोते है फलदार है छायादार है अच्छा हरो भरो बने रहे अने वात नो ध्यान रखो है कि बपोरा तेमने पानी नहीं पाई दे क्योंकि बपोरा में एटलो तगड़ी थकू है ताप है गर्मी है तो ई उकाई जाएगा अने वात नो विशेष कर ध्यान रखे। किसान भाईओ देखो अपने भी ध्यान रखू है हलवार टाइम में तुमने तेमने खेतर में जाव पड़े ने कामकाज करव पड़े ने पसे अपने राम राम राम।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत।
2: गुरु को की दे बंदगी
1: आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माधवानंद भारती की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।
2: गुरु कर ले आप समान।

Mickey,

समझावता। अरे चेले मानी ना, अरे खेता खेता जा पड़े रे भाया ऊंडा कूड़ा मां। अरे सतगुरु जी समझा,

सतगुरु जो जी जुगत में अरे मुकत स्वरूपी हंस हरि राम का गा मिला रे तुरत बदलिया बंस।

0: चंद्र बांसुरा
1: गजानन भूत धनाभिषेवितम् कपीत जमो फलचार भक्षणम् उमासुतम शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज।

भग पसंद ब्याह साजी पगसो एक धन तीरे तक

0: इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रभा ठाकुर से काव्य पाठ। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: कविता है नीम समान जी सखिरी। लग लग सुख की दो सांस भरी, फिर दुख सरिता में डूब गई। नीम समान जी सखी में असुवन जल बीच उम्र बीती। जब से मैं कोख में आई सखी, घर गांव गली रिश्ते नाते सबने माँ को ताकीद करी, इस बार बहू बेटा दीजिए। पितरों के धूप की चिंता में खुद धूप समान जली माँ थी। 9 महीनों तक माँ ने मेरी थे पाथर पाथर देव किए। पीर फकीर साधु भोंके सब माँ ने पागलों से धोके, जाने कितने तावीज लिए थे अंग अंग बंधवाए सखी। 9 महीनों में आधे दिन तो उपवास रखा मेरी माँ ने सखी, पर हाय किसी ने भी न किया मुझको बेटी से बेटा। मेरे आने के पहले ही दादी ने खबर चहुं और करी, किस्मा इनके हाथों अक्सर लड़का ही जन्मा है अब तक। कितने मान निहोरों से दाई आई उस रोज सखी, और देखिए जब मैं जन्मी तो क्या कहती है। तुम ठाकुर ठीक से ना पूजे, उपवास नियम कुछ भी न किया, इस कुल की लुटिया डूब गई, हाय बहू बेटी जन्म दी। अब आगे की हरी ही जाने, अपनी तो बरस की आस गई, झांझर लेती जो बेटा जनती, झोली भर धान ही ले चली। जनमत जननी की आह सुनी, जनमत जननी की आह सुनी, दादी ने माँ को दी गाली, बाबा मुख मोड़ के निकल गए, आंसू भरी आंख से माँ ने देखा। जो बेटा होती दूध हो नाती, जो बेटा होती दूध हो नाती, असुमन जलसों में नाई सखी। जो बेटा होता थाली बजती ढोलक बजती, मधुर बधाई गाते सब।

झुनझुन छमछम की धुन सुनती। मत पूछ सुना क्या मैंने री, मत पूछ सुना क्या मैंने री, चित्कार पड़ी कई कानों में, नन्हा सा हृदय मेरा बहल गया, ताई चाची बुआ सभी यूं रोने लगी जो कोई वो मरा। एक साल की मेरी बहना को ताऊ ने जमी पे दे मारी, तू पीछे भी छोरी लाई, डाइन तू मरी क्यों ना अब तक, अवसाद भरे मन से मुझको मार।

गति है बेटी, भगवान के घर अंधेर नहीं, धीरज धर अब की बेर सही। इतना सुनते ताई तमकी, ऊंचे सुर में वो यूं बोली, या नारन कोख पलटने की लल्ला, तुम तो दूसरी ब्यालो। अगणित तानों के डंकों से परेशान करती सब नार चली, तब माँ को सुधी मेरी आई। ममता की रूख उठी मन में, छाती से चिपटा कर मुझको माँ शीश पे हाथ फिराने लगी। वो महीनों भूखों पेट रही, मैं दूध कहाँ सो पाती सकी। माँ मेरी क्षुधा को समझ गई, अपराधिन सी आंखें मूंदे वो मन ही मन अकुलाई उठी। आंखों से गंगा बह निकली, गालों से झड़ती बूंदे थी, मेरी तृषा बुझाए रही। जग में सबसे पहले चाखा माँ के आंसू का स्वाद सखी। तब से पीड़ा का विष पीती, शिव समान जी मैं सखीरी। आंसू से भीगे आंचल में माँ ने मुझको लिपटाए लिया, तब से आंचल सिर से न हटा, माँ का आंचल मेरा आंचल। संसार कभी ना देख सकी, लिपटे सिमटे मेरी उम्र गई, गंगा यमुना तो सदा रही मेरे आंचल के साथ सखी। छठी पूजन पे नानी बोली, छठी पूजन पे नानी बोली, पीड़िया ओढ़ाती तुझे बेटी, जो गोद लला से भरी होती, पर हाय गोद बेटी तेरे मैं सादा पोत उड़ाए रही। माँ पीड़िया ओढ़न को तरसी, ये अपराध लिए सिर पे मजी, करधनी झांझर लाती बाजी, होली पे ढूंढ कर आती मैं, पर हाय गोद बेटा तुमरे एक पीत जगह में ले आई। कब गोद से उठ खुद गोद बनी, इस द्वार से कब उस द्वार गई, इस बाड़े से उस बाड़े में गैया सी यहाँ की गई सखिरी। जननी का हाथ हटा सिर से कब, कब मैं खुद सिर सहलाए रही, दिवसों में बरस जिए ऐसे की यौवन में ही बुढ़ाए गई। घूंघट बदली छाई ही रही, पियका न कभी मुख चंद दिखा, घायल चकवी सी जी सखिरी, नाहर संग भीत मगी सी जी, तपती बालू सत पातन मन, आवा सी सुलग जी सखिरी, मैं तो चातक सी निहारे की, स्वाति में बदली ना बरसी। ये गए समय की बातें हैं, ये कह मुझको न भर मारी सखी, वो समय था कि मैं जी तो सकी, अब तो मैं जन्म न पाऊं सकी। तेरी वैज्ञानिक प्रगति ने भी गाज मुझी पर तो डाली, जग तो था पाषाण सदा ही, माँ भी पाषाण बना डाली। माँ का आंचल था कवच कभी, अब कवच कोख का भी टूटा, नचिकेता से गति है अब तो, मैं कोख से ही यम द्वार चली। एक कोख से दूजी में जाते जाते मेरी उम्र गई, ए काश जन्म तो ले पाती, खारा कड़वा खट्टा मीठा कैसा भी जीवन चख पाती, अब तो मैंने देखा केवल कोखों का कारागार सखी। लग लग दो सांस भी ले न सकी, मैं जन्म जनी पे ले न सकी, शुरू होने से पहले होता अब अंत कथा का ही सखीरी। लग लग दो सांस भी ले न सकी, मैं जन्म जनी पे ले न सकी, ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से यह जग देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने, वे मुझको स्वीकार्य नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का श्राप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, धर्मराज का दाव गलत था, उस मति अंध की धूत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुणक विदुर राज का, कृप और द्रोण से आचार्यों का, सबका वह वैवश्य गलत था। तो बरसाती नाले सी उछकल अपनी राघव लवकुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती, स्वेच्छा से जो लगा रही हो नित्यशील को दाव पे अपने, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था कि सदियों से जो सिले हुए हैं उन होठों की सीवन खोलूं, भागीरथी सी कलकल करती हिमगिरी से सागर तक फैले, अपने अनुभव जग से कह दूं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली खिली सी खिलखिल हंस दूं, रात रानी सी गह गह माकू, कोयल की कूकू सी कूजूं, चिड़िया की ची ची सी चहकू, घनघोर घटा को देख नाचते मुग्ध मयूर सी मैं भी नाचू, मृग शावक सी भरूं कुलांचे, पायस बहार बयार बन मन छू जाऊं, बन इंद्र धनुष नप पर छा जाऊं, किसी ताल पर छमछम गिरती बरखा की बूंदों सी नाचू, वणिक की रातों की बंशी पर सम्मोहित हो स्वर्ण मृगी बन, नित नूतन नव उत्पादों का विज्ञापन संवर्धन करती किसी मदारी के मरकट सी, अधम वेश धर अधम भाव धर निर्लज्जों को लज्जित करती, रजत पटल पर अभिनय करती, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो,
तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी।

0: रही हूँ। ये तो मैंने चाहा था कि अबला से सबला हो जाऊं, धवल राशि से अपने मुख से अवसादों की घटा हटा दूं, पल पल जल जल जलने वाली नयन अश्रु की धार सुखा दूं, अश्रु जल से क्षार हो गए नम्मा चल से लवण हटा दूं, जो ऋषि वेश भर धर मुझको ढकते जो ऋषि वेश धर मुझको ठकते उन देवराज की मंशा भापू, उनके संगी कुक्कुट जन की बन बिलाव बन ग्रीवा दबोचू, स्वयं ही खींचू लक्ष्मण रेखा और जो उसको पार करे उस दशानन की नाभि वेदू, शकुनी को पासू मैं जीतू, दुशासन की भुजा उखाड़ू, दुर्योधन की जंगा तोड़ दू, अष्ट लक्ष्मी से रूप धरूं, कभी नवदुर्गा की छवि कभी धारूं, एकल रूप स्वरा मासी शुभ्र ज्योत्सना ज्ञानमयी बन संतति को विद्वान बनाऊं, नहीं सुता और सुत में अंतर जगती को मैं यह दिखलाऊं, मातु पिता का बोझ घटाऊं, प्रियतम का भी हाथ बटाऊं, इस आंगन में कली कली सी उस आंगन में खिली खिली सी, शरद चांदनी सी शीतल सी बाल रवि सी योज युक्त सी जीवन बगिया को महकाऊं, निज भ्राता से ईर्ष्या करती अनुशासन उल्लंघन करती बाहर से नरवेश धरे और भीतर से भयभीत मगी सी, मरुधरा की सरस्वती सम कोमल भावों की सरिता को स्वयं कृत्य से शुष्य कर रही, संबंधों के अर्थ मिटाती मात्र अर्थ के पीछे भक्ति पुरा छवि को धूमिल करती, उपमाओं को घायल करती घर को पैरों तले कुचलती मात्र हृदय का तर्पण करती, कभी योगिनियों से वेश धरे कभी मुंड मालिनी सी छवि धारे, रूप गर्विता अति दर्पिता आत्म मुग्ध सी हृदय हीन सी भाव शून्य सी स्नेह रिक्त सी किसी यंत्र सी यति मंत्र सी ज्येष्ठ पवन सी सुखी नत सी, प्रज्ञाहीना लक्ष्यविहीना इस आंगन में आग लगाती उस आंगन में पतझड़ लाती, स्वयं लाज की चिता जलाती अहम अग्नि से हाथ सेकती, काक प्रियासी निज संतति को परखदनी से पलवाती, मृदु किशोर वय में संतति को मरगट का सन्नाटा देती, वृद्धजनों की लाठी हरती दोनों पीढ़ी की अपराधी, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो कोई और नाम तुम खोजो तुम भारत की नारी नहीं हो।
1: इस काव्य पाठ के साथ ही कार्यक्रम वातायन अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर, प्रातः के 7:30 होने को है। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के में। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत तपस्या फिल्म से। किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार का लिखा गीत आर डी बर्मन का संगीत बत किया आंधी फिल्म से।

0: डालते हैं। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया गीत फिल्म किनारा से गुलजार की भूल, संगीत आजी बर्मन का।

हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना अंतराल, और अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत अदालत फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारंट फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म वारंट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

हमें राही प्यार की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में एमजी हशमत का लिखा गीत है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम उलझन।

उलझन फिल्म से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यही संपन्न होता है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य।

0: विषय है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
5: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
6: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया।

0: हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ

0: बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल को और मैं हूं आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हीना जैन, लेकर आई हूं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से। तो सबसे पहले दिल से आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है। खेल हमें सिखाते हैं अनुशासन, मेहनत, धैर्य और सबसे जरूरी निष्पक्षता। इसी भावना को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली जीत वही है जो ईमानदारी और खेल भावना से हासिल की जाए। तो आइए आज खेलों की ऊर्जा, जोश और जीवन के सबक को कुछ दिल से महसूस करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं एक जोश से भरा, खेल की भावना से जुड़ा ये मजेदार सा गीत।

दोस्तों खेल हमें सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जिंदगी में भी आगे बढ़ना सिखाते हैं। ये हमें मेहनत करना सिखाते हैं, हार से सीखना और फिर से उठकर कोशिश करना सिखाते हैं। हर खिलाड़ी गिरता है लेकिन वही खिलाड़ी आगे बढ़ता है जो हार मानना नहीं सीखता। खेल हमें

मजबूत बनाते हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैदान में जो गिरकर संभल जाता है वही जिंदगी में असली खिलाड़ी कहलाता है। आइए श्रोताओं सुनते हैं इसी भावना से भरा एक और गीत।

दोस्तों, जीतना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन सही तरीके से जीतना सबसे बड़ी बात होती है। निष्पक्ष खेल हमें ईमानदारी और सम्मान सिखाता है। खेल भावना का मतलब है प्रतिद्वंदी का आदर करना, नियमों का पालन करना और पूरी सच्चाई के साथ खेल खेलना, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो जीत में विनम्रता और हारे में धैर्यवान हो। जीत से ज्यादा जरूरी है उस जीत तक पहुंचने का सही रास्ता, क्योंकि मंजिल एक पल की बात है, पर उस मंजिल तक पहुंचने का जो समय है वो इंसान को बनाता है, इंसान के चरित्र को गढ़ता है। इसलिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, सही तरीके से खेला गया खेल और फिर हासिल हुई जीत ज्यादा मायने रखती है। आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

वैसे खेल हमें साथ चलना सिखाते हैं। एक टीम तभी जीतती है जब हर खिलाड़ी एक दूसरे पर भरोसा करता है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब परिवार, दोस्त और अपने साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि अकेले नहीं, मिलकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जो साथ चलना सीख जाते हैं वही जिंदगी की दौड़ जीत जाते हैं। यही जिंदगी जीने का असली मंत्र है। इन्हीं बातों के साथ आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हर खेल में सिर्फ जीत नहीं होती, कभी हार भी मिलती है। लेकिन हार हमें टूटना नहीं बल्कि और मजबूत बनना सिखाती है। कई बार हार हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जो इंसान हार के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, वही आगे जाकर इतिहास बनाता है। हार अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत का मौका होती है।

दोस्तों, अगर गहराई से सोचे तो जिंदगी भी एक खेल की तरह ही है। यहाँ पर संघर्ष है, मेहनत है, जीत है और हार भी है, लेकिन जरूरी यह है कि हम अपना खेल ईमानदारी और पूरी दिल से खेले, क्योंकि आखिर में याद सिर्फ यही रहता है कि हमने अपना सफर कैसे जिया। इसी प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ मैं ही ना जीन लेना चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा, आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है

0: कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली की सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी प्वाइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल 2 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के

0: पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशमदान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, सुंदरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाये कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:30 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीरा अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है।

0: साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
1: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है।
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है,
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी,
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी,
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी,
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था, और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
0: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
0: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
0: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, इतनी अच्छी बात बताई इसने।
4: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
4: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के

0: औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
5: नहीं, नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बया,
3: मिट्टी पानी और बया,
4: जिंदा है के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे
7: क्या कर रहे हो?
6: मेरा मुंह के ताक रहे हो?
7: अरे
6: शुरू मारो,
7: अरे
5: भाई कौन है? रुको, इस जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
6: सुनो, आगे बढ़ो।
5: अरे कहाँ
6: से? तुम इनकी बातों में बताओ।
8: मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
5: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा ही होने देंगे।
3: आगे बढ़।

0: कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
1: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काट दो, चलो।
4: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
3: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
4: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
4: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
4: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है,

0: वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
1: जी।
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे है, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा।
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्या दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीजें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना यह भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन

0: फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है।
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच। क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहां पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है, तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो

0: लोड हो जाता है एक टाइम पे कि
1: पचा
0: इतना सारा
1: पाएगा।
0: पचा नहीं पाएगा और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
1: ओहो, हैवी हो जाएगा।
0: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं तो वो पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है, अब इसमें जो क्रॉनिक

0: डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है।

0: हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्कशेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
1: अच्छा।
0: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
1: ये तो अच्छी बात बताई आपने, प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
0: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
1: जैसे ऑरेंज है
0: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है और

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं।
1: यस,

0: इसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
1: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16वां साल मूवी से
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: सब गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहां से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेस देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है, जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे

0: ऐसे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में.
1: जी जी
0: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई. अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है.
1: इसका क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए. जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है. ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है. तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है. ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं. तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे.
1: जी.
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर. तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है. इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो. तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का. और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है, यानी शाकाहारी सोर्सेस है.
1: जी.
0: ये मेजर सोर्सेस है. इसके अलावा भी काफी सारे हैं, बट ये तो ज्यादा जरूरी है. और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है.
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है.
0: जी. और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है.
1: जी.
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं. तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है, क्योंकि वो सिट्रस भी है. पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है. तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है. सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है. अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है. इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची.
1: ओहो.
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में. तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे.
1: जी जी. और देखिए, आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा.
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए.
1: अच्छा.
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है. तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है. और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे. जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं. वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज, नट्स हो गया, जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है. पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा. तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए. हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो. जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे.
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए.
0: इश्क बुलावा, हंसी तो फंसी पिक्चर से.

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर

0: दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लोग बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता है।
1: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर

0: करना चाहिए।
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी
0: जी,
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है गर्मी में, अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाए, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, विटामिन्स इम्पोर्टेंट है, सोर्सेज इम्पोर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन्स प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आई श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 11:30 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं फिल्म हम दोनों से। गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, बोल लिखे हैं साहिर ने और धुन बनाई है जयदेव ने।

फिल्मी संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गोलमाल से। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार की बोल और आर टी बर्मन का संगीत।

संतोष आनंद की फिल्म से निकले इस गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है शोर।

फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म इम्तिहान से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार हैं मसरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म परिचय से लिया ये गीत आप सुन रहे थे जिसे गाया था किशोर कुमार ने, गुलजार के बोल थे और आरजी बर्मन का संगीत निर्देशन। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

पीछे पीछे सपनों के भागे हे तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपना।

0: फिल्म पिया का घर से लिया ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था किशोर कुमार ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: archives.co.in।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: की दिशा में एक और कदम होगा, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
4: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
5: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपए और डीजल 94.08 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपए और डीजल की 96.07 रूपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपए और डीजल की 96.11 रूपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है संगीत।

हर तकदीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंस

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

कन आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: पवन कुमार की आवाज में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से, प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से, प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी सच्चाई नादानियां उम्र के साथ किताबें बाली उम्र में नैन से नैन मिलना प्रेम की जीत हार संघर्ष नाम करने की ख्वाहिश जीवन साथी परिवार सुकून भरी जिंदगी सुकून भरी दुनिया यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही है। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी

की नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बने हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 की बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या है, यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए? ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोल एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटकेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में, किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है

वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान, किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम बढ़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्ता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोखों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूं। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ी गलती कर दी थी।

तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो पहले समझा मैं याद कर रहा हूं, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयां बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल ही गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है, स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीजें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत पार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे

टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथी में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में। किसी की फूलों जैसी हजी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है। इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा और यही अनुभवों का कड़वा फल भुगतता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी है। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे, फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की। बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में। वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उन्हें भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया। बाद में डांट पड़ी है, बिल्कुल सही बात है। सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किरायेदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की दुर्गंध भर जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम काम आते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही है, रोटी बना रही है और कमेंट कर रही है, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर। हमें वो दिन याद आ रहा है और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में। 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी। हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी। हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था। इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी। एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा। ऐसे होते हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोछी, ठंडा पानी पिलाया और

पर प्राथमिक उपचार किया और स्कूल के टीचर को भी बता दिया और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारी श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने विषय पढ़े हैं, उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और नौवीं दसवीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो। किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रहे हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं। बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें

आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। जहां की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सव

वो त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

सर्दी में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं न कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में

0: से भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस

0: मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रूपये 64 पैसे प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91 रूपये 58 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 107 रूपये 59 पैसे और डीजल 94 रूपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रूपये 70 पैसे और डीजल की 96 रूपये 7 पैसे दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रूपये 49 पैसे और डीजल की 96 रूपये 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

स्वामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती मां के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली पहलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: तुम देना साथ मेरा वो हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
8: तुम आ गए हो नूर आ गया,
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो। इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।
1: मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे।

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला
1: जी।
2: है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं।
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है। जीवन में कभी कुछ ऐसा हो आता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें आप कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत

0: कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डटकर मुकाबला कर रही थी।
0: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
0: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
0: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
0: जी।

0: और देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने जब... भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा, कभी कभी ऐसा था ना हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और दोनों के मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से, तो पहला संदेश पढ़ते हैं। ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि

0: जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं। और हर माँ की आंख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आंख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या
1: है?
0: बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो, होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।
2: चंदा है तू मेरा सूरज।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाता है।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं, फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऐसी हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में, हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती

0: स्वीकार करना, अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
0: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में न देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं। भाई, आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई, मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे। अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे, हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की।

0: और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
1: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं भाई, पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
0: का तारा होते ना बच्चे।
1: हाँ। इसीलिए
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में 93% और 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भाई 1% कहाँ चला गया।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती हैं, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती हैं। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: तो गाना सुन ले
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उन्होंने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: सोनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: सेवा भाई,
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉयड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज

0: आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था इसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहां से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो। जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी,
0: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
0: वाह वाह वाह, भाई ऐसा
1: कहां
0: है,
1: कहां से कहां ये बात देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक किस्म से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ।
3: क्या है तुम्हारा?

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: वो वे भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, और जो गाने वाले थे वो भी, अभी मेरा एक गाना हुआ था फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना, और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, इस समय की का कितना अभाव है, कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी, क्योंकि माहौल ऐसा था
1: जी, इतना पेशेंस थे लोग, और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
0: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना,
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा हुआ।
0: जी जी।
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
0: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे, तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई। और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रूपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन
0: में।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक। और यहीं नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी के लिए और आज भी उनकी पारी चल रही है, उनके साथ आपने कितनी फिल्में नाजम की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने, मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फूलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिन्दुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना,

शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की, और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की, तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहां भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई, और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था, और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइये, फैज अहमद फैज की ये रचना, और बोल है आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: करुण बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी है वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तज्जुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आईलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा छिजे मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उनपे करा के वो गाने हम वहां पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर

0: की जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
1: जी,
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है नीला पानी सफेद रेत पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सबके अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हूँ?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार आप भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.3 MHz की आवृत्ति पर। शाम के 5:05 में प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज की सभा के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अमूमन प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए आपको ले चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विवरण की ओर। अब से कुछ देर में यानी ठीक 5:05 पर शहरी महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विविध भारती के मुंबई किंग से शाम 5:30 पर और रात्रि के 9 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया प्रसारित किया जाएगा शाम 6:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम के ठीक 7 बजे।

जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से शाम 7:30 पर। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। 10 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का और 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

आइए आपको ले चलते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रामचरितमानस गाना को सुनाया जाएगा 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे खेती निपात। आदिवासी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 6:50 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन और 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

कार्यक्रम कुछ तुलसी की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी प्रातः के 8:15 पर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर और 11 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत आपको सुनाया जाएगा प्रातः के 11:30 पर और 12 बजे से आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब शहरी महिलाएं सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक।

सुकून मिलता है वहीं जहां अपने साथ होते हैं। थोड़ी सी मुस्कान में भी कई जज्बात होते हैं। ना दौलत ना शोहरत दिल को खुश कर पाती है, सच्चे रिश्तों की छांव में ही राहत मिल पाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखे को प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। दोनों आज विश्व निष्पक्ष खेल दिवस है जो हर साल 19 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों में ईमानदारी, मित्रता, एकजुटता, समावेश और गैर भेदभाव को बढ़ावा देना है। जुलाई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित होने के बाद इसका पहला आधिकारिक उत्सव 19 मई 2025 को आयोजित किया गया था। तो बहनों, आज हम बातचीत में इसी विषय पर चर्चा सुनेंगे। बांसवाड़ा के

0: वीरभद्र सिंह चौहान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं बातचीत।
1: विश्व निष्पक्ष खेल दिवस है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है सेंट्रल एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और हमारे वागड़ का गौरव हैंडबॉल खिलाड़ी वीरभद्र सिंह चौहान। नमस्कार वीरभद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वीरभद्र जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का महत्व क्या है।
2: यह दिन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीतने का नाम ही नहीं बल्कि खेल एक ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। निष्पक्ष खेल का अर्थ है नियमों की पालना करते हुए पूरी सच्चाई और खेल भावना के साथ खेलना है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल में भेदभाव, धोखाधड़ी, राजनीति को मिटाकर मित्रता, समानता को बढ़ावा देना है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीरभद्र जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका शुरू से लेकर अब तक का सफर कितना कठिन रहा, इसमें आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही।
2: मेरा शुरू से लेकर अब तक का सफर बहुत ही कठिन रहा है क्योंकि आज के युग में जहाँ युवा शिक्षा को महत्व देते हैं वहाँ मैंने खेल को चुना, तो खेल उतना आसान नहीं है जितना हम देखते हैं। उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, कड़ा त्याग करना पड़ता है। पर्दे के पीछे भी कई चेहरे होते हैं जो एक खिलाड़ी को निखारने में जी जान से मेहनत करते हैं। मैंने मेरा सफर 12 साल पहले शुरू करा था जहां मैंने 2 बार जिले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, 12 बार राज्य स्तरीय पर खेला, 2 बार राष्ट्रीय शिविर में भाग लिया, 1 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेला जिसमें उप विजेता रहा। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जहां मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो शुरू से ही एक खिलाड़ी का जीवन बहुत ही कठिन और श्रम से भरा होता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा वीरभद्र जी के बिना मेहनत के तो फल मिलना आसान नहीं होता है। अब आप हमारे युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे।
2: जैसा कि आजकल हम सब जानते हैं कि युवा बहुत कम मात्रा में किसी शारीरिक गतिविधि से जुड़े होते हैं, वे अपना पूरा समय टीवी, फोन में इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर के लिए शारीरिक गतिविधि से जुड़े, और खेल से हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है जो आगामी जीवन में बहुत लाभदायक साबित होती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अब वीरभद्र जी ये बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे कोई भी उम्र का हो, उसे खेलना क्यों जरूरी है।
2: प्रत्येक व्यक्ति को खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि खेल से हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। खेल से जुड़े होने से स्वास्थ्य और शरीर एकदम सही होता है जिससे बीमारियों का डर नहीं रहता और शरीर भी स्वस्थ रहता है। खेलने से तनाव दूर होता है और मानव मानसिक और शारीरिक रूप से भी बेहतर रहता है।
1: वीरभद्र जी, जैसा कि आपने कई गेम्स खेले और इसके लिए आपको बाहर भी जाना पड़ा, तो वहाँ और यहाँ दोनों में आपको क्या अंतर महसूस हुआ।
2: जैसा कि मैं बाहर गया था उज्बेकिस्तान खेलने, तो वहाँ पर जो युवा है वो फोन, मोबाइल, टीवी में अपना समय व्यर्थ नहीं करते और खेलों के प्रति बहुत ही जागरूक है। उनके माता पिता उनके पीछे 6-6, 7-7 घंटे सिर्फ खेल के प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर तैनात रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ के और चले गए, वो उनके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा कैसा खेल रहा है, उसकी डाइट, सोने का टाइम, सब कुछ। तो वहाँ में और अपने यहाँ में बहुत फर्क है। अपने यहाँ जैसे माता पिता पढ़ाई को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, पर वहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बहुत बढ़ावा देते कि वहाँ के माता पिता बहुत ही जागरूक है खेलों के प्रति। अपने बच्चों को शुरू से ही 5-6 साल की उम्र में भेज देते हैं ग्राउंड में कि खेलो और अभ्यास करो। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ 6-7 साल का बच्चा फोन चलाता है, टीवी देखता है और बहुत ही कम उम्र में फिर उसे कई सारी बीमारियां, चश्मे, ये सब आ जाते हैं। वहाँ माता पिता भी बहुत जागरूक है और बच्चा भी बहुत जागरूक है। उसके मिश्रण से ही बच्चा आगे बढ़ता है और अपने देश का नाम रोशन करता है।
1: वीरभद्र जी, अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे।
2: अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी युवा खेलों से जुड़े। माता पिता से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शुरू से ही खेल में जुड़े जिससे उनका शारीरिक, मानसिक हर एक रूप से विकास हो और आगे जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो वे उसका सामना बिना किसी डर के कर सके। खेल हमें खेल भावना, ईमानदारी, सब कुछ चीजें सिखाता है। मेन तो है हार। सब जीवन में जीतना चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता है। खेल हमें हार भी सिखाता है और जीत भी सिखाता है। मेन है हारना। जीत तो सब जाते हैं पर हार हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो हारना भी बहुत अहम भूमिका निभाता है जीवन में जिससे हम अपने आगे का जीवन बहुत ही अच्छा और निडर होके जी सके।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर।

0: कहते हैं। वीरभद्र जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आप हमारे कार्यक्रम में आए और भाग लिया, खेल के महत्व और खेल भावना का संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित करा और खेल दिवस के उपलक्ष्य में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार,
5: फिर से स्वागत है बहनों आपका कार्यक्रम में। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। अच्छी मती जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें सही समझ, अच्छी सलाह और जीवन का सही मार्ग चाहिए तो हमें अपने बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। बुजुर्ग अनुभव के खान होते हैं, उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए उनकी बातें हमें सही दिशा दिखाती है। आज के समय में लोग जल्दी फैसले ले लेते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा देती है। अगर हम अपने माता पिता, दादा दादी या घर के बड़े लोगों से सलाह ले तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है। बुजुर्गों की सीख केवल किताबों का ज्ञान नहीं होती बल्कि जीवन का सच्चा अनुभव होता है। उनकी बातें हमें धैर्य, संस्कार और समझदारी सिखाती है। तो आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनके अनुभवों से सीखेंगे, क्योंकि सच ही कहा गया है अच्छी मती जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। ये तो थी बातचीत, फिर चलते हैं अगले विषय की ओर। पहले तोलो फिर बोलो। कई बार हम बिना सोचे समझे तुरंत बोल देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है, इसलिए आज की छोटी सी सीखे पहले तोलो फिर बोलो। हमारे शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। एक मीठा शब्द किसी का दिल मना सकता है और एक कड़वा शब्द दिल दुखा सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमें यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारी बात सामने वाले को कैसी लगेगी। कई बार गुस्से में या मजाक में हम ऐसी बातें कह देते हैं जो रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। अगर हम थोड़ा रुककर, सोचकर और समझदारी से बोलें तो विवाद भी टल सकते हैं और प्यार भी बढ़ सकता है। बड़ों ने सही कहा है कि तीर का घाव तो भर जाता है लेकिन शब्दों के घाव जल्दी नहीं भरते हैं। बच्चों को भी छोटी उम्र से ही यही सीख देनी चाहिए कि धीरे बोले, मीठा बोले और सोच समझ कर बोले, क्योंकि अच्छी वाणी इंसान की पहचान होती है। जो बात हम नहीं सुन सकते वो दूसरों के लिए कदापि नहीं बोलेंगे। तो आइए आज से हम पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, पहले तोलेंगे फिर बोलेंगे। यह तो थी चर्चा और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं।

इसी के साथ समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

अभी शहरी महिलाओं के लिए उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक प्रसारित किया गया। FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी पासवाड़ा का FM माही चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लिए चलते हैं आपको विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: पुरानी नई पुरानी
1: बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम तराने नए पुराने में। लीजिए इसकी पहली पेशकश।

तराने नए पुराने की पहली पेशकश आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म से। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, देव कोहली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत मैंने दिल तुझको दिया से, डब्बू मलिक का संगीत, फैज अनवर ने से लिखा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा। संगीत जतिन ललित का।

मदहोश दिल की धड़कन ये गीत अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और जतिन ललित का संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

तराने नए पुराने के बाकी के गीत आप सुनेंगे समाचारों के बाद। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के सात जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने

0: इन कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या पहली अप्रैल 2024 में लगभग 5000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती। तराने नए पुराने के शेष गीत लीजिए सुनिए।
2: मैंने

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म का नाम है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने विविध भारती से।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं। FM 101.3 MHz पर शाम के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9414066730। श्रोताओं, मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9414066730। श्रोताओं, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में जिनमें अधिकतर युवा हैं, नशे की गिरफ्त में हैं। श्रोताओं, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया, वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदी हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
1: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
2: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता तू कैसा है?
1: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
2: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
1: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?

0: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाली देगी।
1: तेरी शादी कब हुई?
0: बस यार अभी 2 साल पहले।
1: सही है, बताया भी नहीं।
0: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
1: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
0: चलो ठीक है।
1: अरे दिया दरवाजा खोलो।
2: हाँ अभी आई।
1: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
2: रमेश भैया है ना।
1: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
2: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले के कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
1: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
2: हाँ अभी लाती हूँ।
1: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
0: बस यार सब बढ़िया है। अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
1: हाँ यार सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
2: ये लीजिए चाय नाश्ता तैयार है।
1: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है।
0: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
1: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खा कर जाता।
0: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊँगा, बस अभी चलता हूँ।
1: ठीक है भाई।
0: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
1: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ दो।
0: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
1: ठीक है कल मिल सकता है वहीं पर?
0: हाँ ठीक है कल मिलते हैं।
1: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
2: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
1: मन नहीं है, तुम खा लो।
2: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
1: ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
2: जी।
0: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
1: क्या बताऊँ यार, नौकरी सही नहीं चल रही है, एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है, मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
0: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
1: तो क्या करूँ यार?
0: अरे बस कर यार, उठ और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
1: दिया ओ दिया दरवाजा खोलो।
2: आज आप फिर से पीकर आए हो?
1: फिर से चबर चबर करने लगी तू?
2: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
1: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू।
0: दिनेश ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
2: अरे रमेश भैया आप आइए आइए।
0: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
3: नमस्ते भाभी।
2: नमस्ते।
3: अरे भाभी ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
2: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
0: भाभी दिनेश कहाँ है?
2: वो तो अभी सो रहे हैं।
0: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए।
2: पता नहीं भैया इनको क्या हो गया है आजकल, पहले तो ये बहुत सही थे पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं, मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं, पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है, वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
3: अरे अरे भाभी आप रोइए मत, शांत हो जाइए।
0: अरे अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ उठ, तुझसे बात करनी है।
1: अरे भाई तू तो सुबह सुबह यहाँ?
0: हाँ इधर आ बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है, शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है, तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता, देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया।
1: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है।

0: शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना। तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा?
1: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ पीकर? पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
0: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
1: भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
0: ठीक है यार, फिर हम चलते हैं।
2: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
0: नहीं भाभी, फिर कभी। अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
2: दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है, सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
1: जी भाभी जरूर।
0: ठीक है दिनेश, चलते हैं।
1: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो।
2: दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदि हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
3: दिया, ओ दिया,
2: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
4: हेलो भाभी।
2: हेलो
4: भाभी, आप रो रही है, सब ठीक तो है ना?
2: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है, कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी है और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
4: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
2: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
4: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
2: थैंक यू रिया।
3: दिया, ओ दिया,
2: अरे ये क्या हो गया, खून, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
0: हेलो। हाँ भाभी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है, सब ठीक तो है ना?
2: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से, और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी, आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
0: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
2: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
0: हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है, ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
2: थैंक यू सो मच भैया।
0: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
3: दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ?
0: अस्पताल में।
3: अरे रमेश तू?
0: हाँ मैं, देख दिनेश डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
3: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
0: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं? दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
4: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने अपने आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हालत हो गई देखो उनकी, और आपने उन पे हाथ भी उठाया। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
3: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
0: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा है।
4: हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं, आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
0: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं,
1: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो दिया।
2: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
0: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
2: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज की कहानी में किस प्रकार तनाव में आकर

दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदि हो गया और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कहानी से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएं। उसके लिए हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है

0: हमारा नंबर है 9414066730। मैं नंबर एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी 9414066730। और साथ ही आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ श्रोताओं, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz की आवृत्ति पर। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही

0: भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके रूपते होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहूँ प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें पेड़ बचाना है क्योंकि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्रीय हित में यहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री ने कितने काफी ने कम किया। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मदद करें हमारे ज्यादा गाड़ी साथ नहीं गए तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में है और ये साइंटिफिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इस काम को अच्छा देखने को।
0: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रूपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने यह बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने

0: अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में यह प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहां दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है।

0: सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ सीपीएस पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडों की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रूपये का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रूपये का भुगतान हुआ। सीपीएस पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रूपये का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार ने साफ नीतियां, राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स राखास केंद्र रातौरों सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुकम ने पाछो लेवणो नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू इस साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य राघणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवन री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश

0: क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावण सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथा राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी चियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स माए मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट सो जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करण रा हुक्म दीना। वे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य माए पिछाण करी जी थोड़ा नी जानकारी देवन बाबत कहो। इ मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगे री सोच नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेतों खनिज निकालवा रा हल्का माए घणो सुधार फियो है। वे कहो के राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो के राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हल्का माए आ खनिजां री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश माए निवेश और उत्पादन बढ़ावण सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगड़ा टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप माथे तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। वह जनताओं अफवाह माथा ध्यान नी देवन री अरज कीनी। इन बीच पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहूँ प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रधानमंत्री जितने हैं और अपने प्रधानमंत्री ने कितने पार्टी ने कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काम करने में मना कर हमारी ज्यादा गाड़ी साथ नहीं गए तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में है और ये साइंस तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी उनसे कुछ इसका अच्छा देखने को।
0: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायत पाछे नापतौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौर फौजी सटीकता सूचना नियंत्रण कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक साग पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वह कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रातेत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रातेत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोड़ाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुक्म माए किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माए नवंबर 2025 माए दिया जया हुक्म माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा हुक्म दीना। अस्पताला स्कूला और दूजी ठोड़ा कुत्ता कानी हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो कि हुक्म री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनो पड़ सके है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

0: व्यवस्थाने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावण रो प्रस्ताव है। इन सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाए ई परिवहन सेवामा और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रा बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग में बताई जियो कि अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा मुहैया करावन री ई जानकारी दी री जी। बसा चलावन सारू प्रदेश में 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर और व्यवस्था री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर माए साफ सफाई री व्यवस्था पीवन रा पानी प्रतीक्षालय और गाड़ियां उभीकरण री ठौड़ समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीक एवं जायजो लीनो। डीआरएम पाली मारवाड़ जोधपुर विच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर और न्यारा न्यारा टेसना माथा हिफाजत तो जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माए जनावरा री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चालन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। इनु घना जंगला माए पानी रा कुदरती और इंसान कान्यू बनाई जा स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा ने मुजब आ नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार नु जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका रे निगरानी माए मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रा टीका लगा दिया गया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हल्का माए स्वास्थ्य विभाग री टीमा लगातार काम कर रही है। इनु 32 तादाद माए टाबरियां रा टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख में आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां री ओर सवारे 8-9 बजे ताई ग्राम पंचायता और सरकारी स्कूलों माए खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इस आगे एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की मदद मौसमी बीमारियों बचाव सही खान पान और साफ सफाई रबारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान और लागते सरहद कने रा हल्का शेखावाटी हल्का और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हल्का माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यो है। मौसम विभाग ने मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौड़ रहे हो। इसके अलावा श्रीगंगानगर माए 45.9 अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग कियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह माए राज्य रा आत्मी हल्का माए सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवन रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश का सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखने सा गई ORS कॉर्नर ही बनाई चिया है। इस आगे जनता ने गर्मी बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम हमारा वारा हांग्रे किसान भाई ने किसान बोने ने सोराड़ी वीणा बेन नो राम राम राम राम। देखो भाई आ किसान भाई नो कार्यक्रम ने हांगरा किसान भाई है टेम था ते सोराड़ी आवी जाए ने जी किसान भाई सोरा माटे नहीं आवी शक्या है ई घेरा बेटा रेडियो चालू करे ने अपनी वाते है भजन है संदेश से होने रहता का होगा। किसान भाइया देखो आप जी कार्यक्रम आवे ई तो आपने कार्यक्रम में शामिल थावो से पण एने हाथे जे भी कामकाज नी वाती है ई भी आपने हंग्र भर थईने वाती करी ले ने सब थकी एक तो मलवो भी थई जाय। पण किसान भाई हंग्र आवी गया है ने आजे हूँ बात करवी है जराक विवरण जानकारी आवे ने पछी आपणे जे भी काम नी वाती नहीं करा। किसान भाई आज आप बात करेंगे मिर्ची ने उन्नत किस्में ने नर्सरी हरती तैयार करा ने जरा बात कर लेंगा लो एवं तापघात ने बचाव हरती करा क्योंकि हर रोज भैया बात करवी पड़े अपने ने बीजी डॉक्टर साहब ने बात है कि गर्मी में जुताई ने फायदा अनेक डॉक्टर साहब की बात है तो ई भी अपने होनांगा एने हाथे भजन वगैरह है ई भी होनांगा आ तो शिव पूरी विवरण बन जानकारी के अपने आने आने बारे में अपने बात करांगा क्योंकि किसान भाई ने इंतजार रहे कि वीणा बेन आई थके हैं आज तो हूं बात करवाना है। किसान भाई देखो अपने काले भी मलवुशियो तो पर आजे भी सोरा माते पासो मौको मिली गयो के आजे भी ज एम ने हंगरा किसान भाई बेने भी पास आवी पड़े। किसान भाई देखो आ लू भी खूब साली रही थकी है गर्मी खूब पड़ी रही थकी है दाड़े नो ते भाई अभी भी अपने जरा बनने नकरत एवं थी रू के भाई आ टाडो वरिष्ठ नहीं रहो पर देखो लू पड़ी रही है गर्मी पड़ी रही है भाई ई तो एनो काम कर रही थके पर किसान भाई अपने भी आप काम है करव है क्योंकि अभी आवा वाली फसल हरू जी भी खेतर वगैरह तैयार कर मेनवा है पण खेतर तैयार तो अपने करी दंगा मम्मी भाई में करी दीदा है पण किसान भाईओ काले भी अपने बात की दी थी कि भाई लू थकी गर्मी थकी बचाव करे ने पसे जी भी खेतर नु कामकाज करव है हवाना टेम में नकरी जा ताकि टाड़े टाड़े जरा जी भी खेतर में साफ सफाई जूते वगैरह ही करी ले तो ठीक रहेगा नहीं तो पसे भाई दस वगैया नौ वगैया पूटी ते बानना न करवाने रे अपने एवी गर्मी पड़ी रही है हमें हमें भाई एवं मन थी जाए कि भाई घर थकी बांधने नकरस ने मैस भाई रहे भाई मैं बहुत तो कहाँ तक है मैं भी एवं भाई थी रू के बांधने जाए रोकड़ो होदी लेव थी रू तो किसान भाईओ

0: जुताई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है, जबकि सामान्य जुताई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर जो सोइल की परत होती है उस तक सीमित रहती है। गहरी जुताई से मिट्टी की कठोर परत होती है जो हार्डपन होती है वो टूट जाती है, जिससे पानी और जड़ों का नीचे तक जाना आसान हो जाता है और पौधे की जड़ें मजबूत बनती है। सूखी स्थिति में भी फसल टिकाऊ रहती है और सामान्य जुताई खेत की सतह को समतल और खरपतवार मुक्त करने के लिए की जाती है। विशेषकों के मतलब जो अनुसार हम साइंटिफिक तरीके से हम बताते हैं, गहरी जुताई हर 2-3 साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए।
1: अच्छा, गर्मी ने जुताई अगर किसान भाई करे तो इन्हें बाद में इन्हें किसान कीट ने रोग तो नियंत्रण थे शरीर।
0: हाँ, बहुत बहुत इसका तो बहुत बढ़िया फायदा है। अपनों ग्रीष्म जो जो गर्मी की जुताई करते हैं उसका बहुत क्या क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ। गर्मी की जुताई से कई प्रकार के हानिकारक कीट हुए, उस कीटों के अंडे है ना जो
1: लार्वा
0: पड़े रहते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। जो जो डिजीज ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो रोग जनक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जुताई के दौरान ये जीव मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप व गर्मी के कारण वो मर जाते हैं, जिससे कीटों की संख्या कम हो जाती है और रोग फैलने की संभावना घटती है। यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, जिससे रासायनिक दवाओं पर भी निर्भरता कम होती है और वातावरण भी सही रहता है और जिससे इसमें अपने नेचुरल फार्मिंग को भी इसमें एक तरीका बढ़ावा रहता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आप उपलब्ध कराई। पहले देखते हैं, पहला जमाना में बलद थकी खेती थी, मशीनीकरण नो युग आ गया तो आने में कहीं फार फेर खरो का अपने हिसाब से?
0: नहीं, जब मशीनों का भी समय समय पर यूज में लेना चाहिए। जैसे अब जुताई के लिए अलग प्रकार के कृषि यंत्र होते हैं
1: जी, कया यंत्र
0: उसका चयन है ना, जो मतलब जो इम्प्लीमेंट्स होता है उनका चयन मिट्टी की मतलब चयन मिट्टी और आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे गहरी जुताई होती है उसके लिए एमबी प्लाव काम लेते हैं और एमबी प्लाव और डिस्क प्लाव सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर अंदर की परत को ऊपर लाते हैं और साथ के साथ अपन जल्दी करना चाहते हैं तो वह भी रोटोवेटर का आपने देखा होगा, रोटोवेटर उसका उपयोग भी खेत को जल्दी तैयार करने और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए किए जाते हैं। और जैसे जिन किसानों के पास में बैल है उसे भी जो अपने जो देसी प्लाव आता है ना, देसी हल आता है उसका भी उपयोगी होता है और सही यंत्र का चयन करने के समय समय भी बचता है, श्रम और लागत की भी बचत होती है।
1: जी बस साहब, बड़ी अच्छी जानकारी कि भाई कया यंत्र किसान भाई काम में लिए, पर कई कई वक्त होता था आप मोथा जेने का आपने
0: मोथो
1: वीड का भी ये भी आवे जाए, एक दूब घास इन्हें बाद एक कायो करें घास मतलब आती है तो इन्हें किसान भाई हेना हिसाब से कि आपड़ा क्षेत्र थे कि वगैरह करे कि भाई कई कितनी जुताई करे कि ये जल्दी निकल जाए गर्मी में ऐसा।
0: इसमें वीड मैनेजमेंट जो खरपतवार नियंत्रण में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बहुत उपयोगी मदद मिलती है इससे करने से। तो क्या मदद मिलती है कि जो गर्मियों की जुताई खरपतवार नियंत्रण एक प्रभावी और सस्ता तरीका है। जिस जुताई के दौरान खरपतवार की जड़ें मिट्टी के बाहर आ जाती है, जो मोथा है आप बोल रहे हो वो उसके जो जड़ें होती है ना वो बाहर आ जाती है। बाहर आने से क्या होता है कि जो बाहर आने से तो तेज धूप से संपर्क में आती है जिसे वो सूख जाता है। सूखने से क्या होता है कि जो उसके मोथा है उसका जो एक नोड्यूल रहता है उसके में वो
1: गांठे
0: तो वो सूख जाते हैं, साथ के साथ में जो उसके बीज है वो भी नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। जिनसे जैसे दोबारा अपन करीब में सोविंग करते हैं तो उसकी जो पुनर्वृद्धि होती है वो कम हो जाती है। इस प्रक्रिया से खेत में खरपतवार की संख्या घटती है जिसे फसल को पोषक तत्व पानी और स्थान अधिक मिलता है।
1: एक बोलो डाबड़ो जिन्हें डाब कहते हैं, डाब घास आते हैं
0: जी, डाब घास
1: जिसको हाथ से अपन खींचते हैं तो धार लगती है, कट जाते हैं उसका उन्मूलन किसान भाई कैसे करें, इन्हें हेरते हुए करें हमारे किसान
0: वही इसी के लिए तो ये ग्रीष्म ऋतु की जो गहरी जुताई है वही उपयुक्त है उसके लिए। साल में वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मतलब 2-3 साल में एक बार ये उपयुक्त है
1: जी,
0: जिसे वो करने से उसका एरिएशन बढ़ता है, एरिएशन बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे सोयल का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे उसके साथ वो वीड मैनेजमेंट उसका आराम से हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब देखो, कई कई वक्त हमारे किसान भाई होकर एक गहरी जुताई कर दे खूब तो बरसात वधारे थी जाए तो मिट्टी ने जो ऊपरी परत जो उपजाऊ बहन जाती रहती मतलब बह जाती है
0: वो
1: हाँ, तो इन्हें कई कई बातों ने ध्यान रखे कि भाई हाँ मिट्टी परत भी नहीं बे नैना हिसाब से जुताई करे,
0: तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई गहरी जुताई साल मतलब 2-3 साल में एक बार ही करनी चाहिए।
1: जी
0: ज्यादा बार अपन को ज्यादा बार करने से खेत की सोल पट्टी लिखी है उर्वरकता है जो खेत उर्वरकता वो कम हो जाती है, जिससे जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व वो भी नहीं मिल पाते।
1: खड़ी जो फसल है इन्हें बढ़ेगी मतलब कटेगी, इन्हें बाद में इन्हें अवशेष वगैरह पड़ा था तो इन थकी जलवा थकी भी कई

0: पराली को नहीं जलाना चाहिए। जैसे उसको या तो अपने आजकल जैसे कंबाइन चलती है, हाँ जो बड़े बड़े खेत है उनको कंबाइन भी यूज में ले सकते हैं, साथ में आज भी उसमें एक पीछे मशीन आती है
1: जी,
0: तो उसे अपन उसको भूसा बना सकते हैं, भूसा बना के उसको अपन पशुओं के लिए चारा के रूप में अपन उपयुक्त ले सकते हैं। और उसको जैसे अपन एक आपको देखा होगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कंजर्वेशन फार्मिंग, तो अपन उसको खड़ी जैसे जो थोड़ा उसके जो डंठल रहते हैं उसमें भी थोड़ा सा सीड रेट ज्यादा रहते हैं, जैसे मूंग की ग्रीष्म मूंग आगे ग्रीष्म में जो उड़द आती है उसकी 10% एक्स्ट्रा सीड रेट लेके उसको अपन सोविंग कर देनी चाहिए उसमें, जिससे उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी रहती है और अपनों सही कम समय में अपना अच्छी उपज भी मिल जाती है।
1: तो गर्मी की जुताई जो है साहब इन्हें हाथे हाथे किसान भाई कोई अपनी खेती नहीं उपज अगर बढ़ाओ चाहे तो हरी खाद वगैरह भी
0: ढेंचा इसमें ढेंचा भी ले सकते हैं, जैसे अपन को ग्रीष्म में कम से कम 45 दिन मिलते हैं
1: जी,
0: 45 दिन मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन ढेंचा लगा दें।
1: अच्छा,
0: तो ढेंचा लगाने से वो ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस मतलब उससे वो क्या कि उसमें उसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से जिससे उसकी जमीन की उर्वरकता क्षमता भी बढ़ती है और उसको ढेंचा को प्लोरिंग स्टेज पे अपन उसको प्लो डाउन कर देते हैं, मतलब उसको ओपन जो रोटावेटर या प्लाउ चला देते हैं जिससे उसकी सोयल हेल्थ भी बढ़ती है और उस फसल को उसमें 25% जितना अपन यूरिया डीएपी जो अपन डालते हैं उसका 25% अपन को कम डालना पड़ता है, जिससे उसके किसानों को फायदा भी रहता है और समय की भी मतलब समय और उसकी पैसों की भी बचत होती है।
1: आप गर्मी नहीं जुताई थकी है, देखो आप उपज बढ़ी सके, खरपतवार नो निराकरण थी सके, ऊसर भूमि सुधार बदले भी कहीं किसान भाई करे
0: ऊसर भूमि के लिए, जैसे यह अपने इधर ऊसर भूमि का ज्यादा मतलब मैंने देखा नहीं, वो हो सकता है कुछ इलाकों में उसके लिए भी ये ढेंचा उपयुक्त रहता है।
1: अच्छा,
0: ढेंचे में क्या है कि ढेंचा जैसे अपन पलो डाउन करते हैं तो इसका एक जो ढेंचा का पीएच होता है जो चार ऊसर का मतलब जो पीएच होता है जो 7 से ज्यादा रहता है, तो उससे जैसे अपन उसका पीएच 4.2 है तो वो उससे क्या है कि उसका जो पीएच है वो डाउन हो जाता है
1: जी,
0: उससे जो उसकी भूमि की सुधार भी सही रहती है और उसकी स्थिति भी सब सही हो जाती है।
1: हमें अपने बात साली रही देखो साहब, आजकल जैविक जो खेती साली रीति की है इन्हें में किसान भाई गर्मी नहीं जुताई करे तो ये भी एक जैविक खातर
0: तरीको है।
1: इन बाद में खातर वगैरह जो नाके इन्हें में कई रासायनिक नो बाजार उपयोग करे क्या देशी खातर नो
0: देशी
1: उपज बढ़ावे
0: हाँ, इस वो भी क्या
1: नहीं हेते है मतलब खातर नो सही उपयोग करते करे गोबर ने खातर
0: गोबर की खाद का सही उपयोग ये होता है कि अपन किसानों को जैसे गाय भैंस होती है उसका गोबर अपन सीधा सा मतलब धूप में डाल देते हैं और कर देते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है वो कम हो जाता है
1: जी जी।
0: इससे क्या करते हैं इसमें सबसे पहले अपन को एक मतलब शेडेड एरिया होता है उसमें ऊपर छाया रहनी चाहिए, छाया रहने से उसके क्या कि जो उसके जो नाइट्रोजन है उसका वोल्टलाइजेशन नहीं होता,
1: परिपक्व था जो खातर मतलब सड़नी चाहिए।
0: जैसे अपन नीचे आपने देखा होगा कभी अपन गोबर की खाद में हाथ डाल देते तो अपना हाथ जलने लग जाता है
1: जी।
0: उसकी प्रकृति होती है गोबर की खाद की गर्म रहती है थोड़ा सा
1: जी।
0: नीचे जैसे वो अपना देसे खोदते हैं तो उसे गड्ढे में थोड़ा सा नीचे एक दो फीट गड्ढा भी रहना चाहिए जिससे कि वो जैसे थोड़ा सा वो बरसात का पानी उसमें नहीं जा सके ऐसा होना चाहिए जिससे वो गलने लग जाती है और वो उपयुक्त हो जाती है। इस वजह से गलने के बाद में ही अपन को खेत में डालना
1: जी जी। हाँ, वर्मी कम्पोस्ट इन्हों भी का योगदान थे सके।
0: वर्मी कम्पोस्ट आराम से इजीली मतलब एक किसान 3 से 4 बेड बना सकता है अपने और अपने केवीके कृषि अनुसंधान केंद्र पर वर्मी कल्चर मिल जाता है और वो कल्चर अपने उसकी बेड में डाल के उसका सीधा सा वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा लोग सोचते किसान सोचते हुए ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें 1-2-3 बेड लगा के उसमें अपन केचुआ डाल देते हैं और जो भी घर का कचरा जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है सब्जी बच गई रोटी बच गई मतलब अपना वीड भी हो गया तो वो भी अपन डाल दे तो उसको वो मतलब जो केचुए होते हैं उसको खा के निकाल देते हैं फिर वो एक वर्मी कल्चर बनता है वर्मी कंपोस्ट बनता है जिससे फिर अपन को खेत में डाल दे।
1: बहुत ही अच्छा पोषण मतलब फसलें बदले थे वर्मी कंपोस्ट से डॉक्टर महिपाल जी आपने तो घणो धन्यवाद पण सालते सालते आ किसान भाई ने दिमाग में एक भ्रांति है कि खेतर में जलाओ तो कि खेतर बढ़िया उपज थी जाए ये थोड़ी फिर पराली जलाई दे
0: पराली
1: एक गेहूं की जो भूसा वगैरह उसको भी जला देते हैं किसान भाई।
0: किसान भाइयों को मैं आपको राय देना चाहता हूं कि
1: उससे कोई पोषक तत्व तो मिलता है क्या भ्रांति है
0: जो भूसा होता है ना उसमें जो सीड से ज्यादा जो सीड में अपन लेते हैं ना उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टेटस रहता है उसके भूसे में, तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि पराली को

0: नहीं चलाए, उसको ज्यादा हो तो चारे के रूप में ले, नहीं उसको उसी खेत में जैसे उसको थोड़ा दिन रहने दे जिससे वो गल जाता है, गलने के बाद में उसकी
1: खाद
0: उसमें
1: बनी जाए,
0: खाद
1: तो
0: बनी जाए और फिर वो सही हो जाए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने घणो घणो धन्यवाद कि आप टाइम निकाली हमारा सोरा माथे पधारे, आटली बढ़िया जानकारी की, गर्मी की जुताई एक और फायदे अनेक,
0: जी जी
1: एने ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी आली, मारे हिसाब से किसान भी आपनी जानकारी अमल में लावेगा ने वधारे से वधारे फायदो मिलेगा। राम राम सर।
0: राम राम सर।
2: किसान मानधन योजना
3: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
4: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
2: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
4: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
2: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
4: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
5: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाइयों देखो डॉक्टर साहब तो पूरे विवरण जानकारी आ लेके जी भी गर्मी नी जुताई ना हो फायदा है हरती जुताई करवी है ने जुताई करते वक्त कई बातों नो ध्यान रखो है ने जुताई करते थकी भी जी भी खोर है जी डाबड़ो वगैरह है न्यू जाहिर थको है तो एना हूँ उपाय है भाई पूरी विवरण जानकारी आ ली देखो अपने एना बात भी अमल करवी जरूरी है। किसान भाइयों देखो हवे जरा आपणे वात करलां के मिर्ची नी खेती ने इमी उन्नत किस्मी हो है। किसान भाइयों देखो आपणे अच्छी पैदावार हरू अच्छा मुनाफा हरू घणा खरा भाई है मिर्ची नी खेती करी रह थका है तो इन्हें हरू आपणे अच्छी किस्म लेवी जरूरी है। घणे वक्त एवं थाय कि आपणे मिर्ची नी खेती तो करा पण किस्म ही आपणे सही नी मळे एटले आपणे ज्यादा मुनाफो मळवो जोईए ई नी मळे। तो किसान भाईओ जी किसान भाई आ मिर्ची नी खेती करवा छाई रहा है क्योंकि अभी आ मई में है जाते जाते आ मई में आपणे मरसानी जी नर्सरी वगैरह है लगाड़ा तो बारिश आवे एने वक्त इने रोपाई है करी दे तो एना मुनाफा हरू अच्छा किस्म हरू एक टू किस्म है पूसा ज्वाला पूसा सदाबार ने तेजस्वी आ अच्छी किस्म है आ किस्म जी अपने अच्छी लगे किसान भाई कम समय में ज्यादा मेहनत नहीं लगे एवी किस्म अपने चयन करो जुए जिनकी पूसा ज्वाला है आ विकसित ने अधिक उपज आलवा वाली किस्म है आज ये मध्यम आकार में मिर्ची रे ने मिर्च है अच्छी रे ने पूसा सदाबार है आ किस्म लीक फरल वाली किस्म है मोजेक वायरस थे की प्रतिरोधी जी किस्म है ने जी हरी ने सूखी बी मिर्च हरू आ बेहतर अच्छी है। बीजी किसान भाई तेजस्वी करीने एक किस्म है तो आ किस्म भी खूब बढ़िया है आ इन्हें वधार करीने तेजस्वी किस्म है ई लोकप्रिय है। हाइब्रिड किस्म है जिन्हें कम समय में बम्फर यानी कि वधार पैदावार आलवा वाली किस्म है तेजस्वी ने तेजस्वी ने जी वक्त इन्हें तोड़ाई है रोपाई है करीबन 80 दाड़ा में शुरू थी जाए तो किमने किसान भाई आपणे वशार करी रह थका हो तो आ तेजस्वी करीने मिर्च किस्म है मरसनी ई लावीने रोपाई कर दे तो इने में अच्छी थकी अच्छी पैदावार कम समय में वधार पैदावार आले एवी किस्म है ने आज अरका लोहित करीन

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान श्रोता के लिए उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ખેતીવાડી કાર્યક્રમને વાટ અડેકતા સગળા શ્રોતાવાના આદિત્ય ભટ્ટરૂને અમારો નમસ્કાર રામ રામ સા સાગે હી વિશાલભાઈ આપના ભી ઘણો ઘણો રામ રામ
1: રામ રામ આદિત્યબેન ઓર સગળા ખેતીવાડી સુનબળા શ્રોતાઓને રામ રામ સા
0: રામા શામા કે સાગે સાગે આપા વાત કર્યા પહેલ કા કાર્યક્રમ કે માયને ઉંદાળા કી ગરમી કી જો કી સબને પરેશાન કર્યા મેલા છે અહીંયા લાગ રહ્યો છે કી જદમાં સબ આગ્યા કોઈ બચી કોન પાયો और ई कमाई ने आपा मनक छा आपा कहीं बच सका छा आपा ने तो दिन रात खेती बाड़ी को काम करना है सागे ही आपना जो पशु है गाय ढूंढ सासर है वहां को सबकी देखभाल करनी है सागे ही सागे आपा के मायने भी क्षमता रखनी है कि आपा भी सबकी देखभाल कर पावा तो इके लिए छोटी छोटी बातों को आपा ने ध्यान रखता हुआ जीवन के मायने आगे बढ़ना है।
1: देखो सा गर्मियों को जो मौसम है वो बड़ो कठिन मौसम रिया करे है। ये मौसम में देखो तेज धूप हुए और गर्म हवाया चले जिस आपने शरीर ने नुकसान पुगे है
0: जी सर।
1: ई वास्ते अपन अपने खान पान और पहनावा को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और देखो अदिति बहन जी थे बताया कि गर्म उंदाड़े है तो उंदाड़े में अपन देखो हल्को भोजन और पौष्टिक भोजन करनो चीज है
0: जी सर।
1: और देखो सा ज्यादा तेल मसाला वाला भोजन नहीं करनो चीज है और जब तो आप कम मिर्च मसाला इन खावाला बतो आप गर्मी के मौसम में आप बचाव आप ज्यादा रेवल हो
0: जी सर।
1: और देखो ताजा फल हरी सब्जियां दही छाछ नींबू पानी और जूस को सेवन ज्यादा से ज्यादा करनो चीज है जिसमें आप गर्मी में बच सका
0: जी सर।
1: और देखो जिया उंदाड़ो है तो उंदाड़ो में जब तो आप ज्यादा पानी पीसा वो अपने शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देवे।
0: और सागे सागे आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी पीर निकला सागे ही पानी की बोतल साथ लेर निकला या फिर अगर आप कूड़ा पानी पी भी रहे हैं तो उनका मायने भी आपने ध्यान रखना की बात है कि स्वच्छ पानी होवे चाहे कूड़ा को भी होवे पीवा योग्य होवे तो उन्हें आपने सेवन करना चाहिए।
1: अब आप बात करें अगर पहनावा की तो पहना देखो हल्का रंग का और सूती कपड़ा का उपयोग अपन करना चाहिए
0: जी सर।
1: सूती कपड़ा कहीं नहीं करे अदिति बहन देखो पसीने जी अपनी गर्मियां ज्यादा आवे शरीर में वो भी इन्हें सोख लिया करे जिसमें अपने शरीर में ठंडक भी सूती कपड़ा मिले है
0: जी सर।
1: जहाँ बारह जमा जना अपन क्यों माथा के ऊपर क्यों ढक लेना चाहिए जहाँ कोई टोपी पहन लो या फिर कोई छत्तो हो गयो या गमछो हो गए बाको प्रयोग कर अपन करना चाहिए जिसमें आप धूप में बच सका
0: जी सर।
1: देखो गर्मियों के मौसम में साफ सफाई को भी अपन ध्यान रखना चाहिए रोजिना नहाना चाहिए हर साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए हर दोपहर अगर जरूरी हुए जब भी बाहर जाना चाहिए नहीं तो धूप में जाना बचना चाहिए
0: जी सर। तो ये उचित खान पान की और पहनावा की बात आप करी सागे ही ध्यान रखवा की बात ये भी है कि गीत संगीत की जो समय है जो रेलगाड़ी छे आपड़ी वो भी आप

0: जी सा प्यारा लागो बजरंगी, सारा भक्ता का जितना भी कारज है वो सारा सारो सा और जितना भी कष्ट आ रहा है माने दूर करो सा, माँ की तो आही अरज है वीर बजरंगी बालाजी से।
1: अब देखो अदिति बहन, पोली हाउस की उपयोगिता के बारे में आपा श्री जगदीश प्रसाद जी हूँ लेवा जानकारी।
0: चालो सा।
2: किसान भाई और बहनों, समय समय पर प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहते हैं और आज मैं आया हुआ हूँ ग्राम खोड़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर में, और इस समय मेरे साथ में जानकारी देने के लिए है जगदीश प्रसाद जी सांकला। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल है और वर्तमान में एक प्रगतिशील किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे सब्जी उत्पादन में पोली हाउस की उपयोगिता इस विषय पर। तो सबसे पहले तो जगदीश प्रसाद जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार।
3: नमस्कार, राम राम सा सभी किसान भाइयों को।
2: सर, आपने सरकारी सेवाओं में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी और प्रिंसिपल की पोस्ट से आप रिटायर हुए। बात करते हैं हम बिजनेस के संदर्भ में, खेती एक मेहनत का व्यवसाय है, आपने रिटायरमेंट के बाद में खेती के व्यवसाय को ही क्यों चुना?
3: क्योंकि मेरे माता पिता भी खेती का काम करते थे और मैं हमेशा से उनसे जुड़ा हुआ था और मेरी मन की भावना ही हमेशा कृषि की ओर थी कि कृष्ण के दर्शन ही अच्छे होते हैं। इसलिए दूसरी बात थी कि मैं जहां भी स्कूल में रहा हूं वहां भी मैंने चारों तरफ पेड़ पौधे लगा करके, कच्ची फुलवाड़ी लगा करके मेरे स्कूल को बिल्कुल सुधारा बगीचा, क्योंकि वैसे विद्यालय के फूल तो बच्चे होते हैं, बाकी मेरी मनोकामना यह थी कि बच्चे प्रफुल्लित कब रहेंगे, जब उनको अच्छा वातावरण मिलेगा तभी जाकर के वो प्रफुल्लित रहेंगे और प्रसन्न चित्त में ही प्रसन्न मस्तिष्क होता है। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको चुना। दूसरा, मेरे ताऊ जी कहा करते थे धन खेती धरक चाकरी धन धंधे व्यापार, इसलिए व्यापार को बार बार धन्यवाद तो कहा गया है, परंतु बहुत बढ़िया सक्षम व्यापार करने में मैं सक्षम नहीं था। खेती मेरी आत्मीय इच्छा थी और मैंने हमेशा से यही कहा कि श्रमसाध्य जीवन ही सबसे सफल जीवन होता है, इसलिए मैंने इसी व्यवसाय को चुना और आज भी मैं 78 साल की अवस्था में हो गया, परंतु मेरे खेत से मेरे पोली हाउस से सब चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूं। पहले जितने मैंने तो नहीं कर पाता हूं, बाकी फिर भी मैं श्रमशील हूं, अभी तक काम करता हूं।
2: तो आप जैविक खेती भी कर रहे हो वर्तमान में, तो इसके पीछे क्या कारण है, जैविक खेती को आप किस लिए बढ़ावा दे रहे हो?
3: क्योंकि आजकल इतने

0: भयंकर रासायनिक खाद चल गए हैं, रासायनिक दवाइयां चल गई है, तो इसलिए मैंने देखा कि आज जब तक जिए तब तक आराम से जिए और मैं और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को और मेरे गांव को और देश को एक अच्छे सुपाच्य भोजन प्रदान करने की संकल्प लेकर के मैंने केवल अपने लिए किया हूं कि मैं पूरे देश के लिए, तो सरकार इसके लिए जागरूक है और वो जैविक खेती मैं करता हूं। 3-4 साल से गेहूं के बीज में, गेहूं है, चना है, यह इनकी जैविक खेती करता हूं और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कार्य खेती का चुना है।
1: हम बात करें पॉली हाउस के विषय में, तो खेती करते करते पॉली हाउस में खेती करने का विचार आपके मन में कैसे आया?
0: मेरे एक मित्र थे रमेश कुमार जी चौहान, जो कृषि पर्यवेक्षक थे
1: जी,
0: उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस खेती में दुख पाते हो, इतना मेहनत करते हो, अगर इतनी मेहनत आप एक पॉली हाउस लगा लो तो उसमें करो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो उनकी राय मुझे अच्छी लगी और मैंने इसी उद्देश्य से अपने अड़ोस पड़ोस में 5-4 पॉली हाउस लगे हुए थे, उनका निरीक्षण किया, उन किसानों से जानकारी ली कि वास्तव में यह अच्छा उत्पादन देता है और आर्थिक दृष्टि से भी मेहनत के अनुकूल जो है श्रम का पैसा मिलता है।
1: कोई किसान भाई पॉली हाउस लगवाता है या लगवाने की सोच रहा है, तो क्या प्रोसेस रहेगी, किस प्रकार से किसान भाई को पॉली हाउस लगवाना चाहिए और कहां उसको संपर्क करना पड़ेगा इसके लिए?
0: देखिए साहब, हर जिले में एक कृषि विभाग भी होता है और एक उद्यान विभाग होता है। पॉली हाउस के लिए हमें उद्यान विभाग के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सर है, उनके नाम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है
1: जी,
0: जिसमें आवश्यक दस्तावेज है। उसमें एक तो खुद की जमीन का नक्शा, जमाबंदी और नक्शा, और उसमें पूरे होने का प्रमाण
1: जी,
0: या बिजली का बिल और खुद का आधार कार्ड
1: जी,
0: और मिट्टी की और पानी की जांच का प्रमाण
1: जी,
0: ये 5-6 कागज आप ऑनलाइन करवा दोगे और फिर ऑफलाइन उनके जो कागज है उनकी कॉपी अपने उद्यान विभाग के अधिकारी जी को जमा करा को दोगे, तो आपका प्रायोरिटी के हिसाब से फिर नंबर आ जाएगा और उसी के हिसाब से आपको पॉली हाउस की स्वीकृति मिल जाएगी।
1: अगर हम बात करें खर्चे के विषय में, तो कोई किसान भाई पॉली हाउस लगवाता है आपकी तरह, तो कितना खर्चा एक किसान भाई को लग जाएगा इस पर?
0: देखिए साहब, इसके लिए खर्चा, मैंने जैसे पॉली हाउस 4 साल पहले बनवाया उसमें लगभग 35 लाख रुपए इसमें लगे, उनमें से 10,12,800 रुपए तो मैंने अपने सराशि जमा कराए, बाकी शेष रकम जो थी वो सरकार के द्वारा अनुदानित थी। किसान के करीब 15 लाख के लगभग खर्चा हो जाता है और अगर कोई किसान इतना सक्षम नहीं है
1: जी,
0: तो उसे लोन की व्यवस्था भी हो सकती है, किसी भी बैंक से इसका लोन लेकर के वो अपने इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं।
1: तो लोन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, किसान भाई को कहां संपर्क करना होगा इसके लिए?
0: इसमें जैसे SBI बैंक है या कोई ग्रामीण बैंक है, उनकी शाखा में जाकर शाखा प्रबंधक महोदय से संपर्क करें और अपने वो जैसे KCC कार्ड बढ़ता है उसी प्रकार से ये आपका एक लोन की फाइल जो है सैंक्शन कर देते हैं और वो पैसा हम सीधा जिस फार्म को या सरकार को देना पड़ता है जमा करा देते हैं।
1: किसान भाई और बहनों, इस समय बातचीत का सिलसिला जारी है और जानकारी दे रहे हैं जगदीश प्रसाद जी सांकला, आप एक प्रगतिशील किसान हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं जो आप अपने पॉली हाउस में ले रहे हो इस समय?
0: देखिए सर, मैं तो इस समय 4 साल से केवल खीरा काकड़ी ले रहा हूं। इसमें फूल जो है ना, गुलाब के फूल भी हो सकते हैं और दूसरा तरबूज और ककड़ी, जुगनी, शिमला मिर्च, ये भी आसानी से इसमें ली जा सकती है। ऐसी खेती के लिए हमें कृषि विशेषज्ञ द्वारा या एग्रोनोमिस्ट के द्वारा हमें पहले जानकारी लेनी चाहिए
1: जी,
0: और उसके बाद में इन खेती करने में आगे बढ़ना चाहिए। हम आराम से इसको जानकारी करके और बाद में इस खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी संभव है।
1: बात करें हम सावधानियों के विषय में, तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो एक किसान भाई पोलियो हाउस लगवाता है या लगवाने से पहले

0: ने उसको या जो फसल खड़ी है उस समय एक किसान भाई को रखनी चाहिए।
1: देखिए साहब, बात यह है कि लगाने का तो जो टाइम होता है, खेत खाली होता है, उस समय लगता है। सावधानियों के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसमें हमें एक तो अपने खुद के जिम्मेदारी के आधार पर जमीन की जांच करवा लेनी चाहिए कि मेरी जमीन में लवणक, क्षारक, अम्लक कोई ज्यादा तो नहीं है। तो उसकी गुणवत्ता में जमीन का पीएच 5.5 से 7 तक होना चाहिए
0: जी।
1: और पानी अपने पास ट्यूबवेल है तो उसकी जांच भी हमें करा लेनी चाहिए। उसका माप भी जो है पीएच 5.5 से लेकर 7 तक ही अनिवार्य है
0: जी।
1: और इसी जो इसकी है वो जल की 0.01 से 0.03 तक ही होनी चाहिए
0: जी।
1: तब जाकर के हमें ये अच्छी फसल दे सकता है। जहां खारा पानी है ऐसे स्थानों पर खीरा वगैरह आराम से नहीं हो सकता है।
0: अब हम बात करना चाहेंगे सिंचाई के विषय में, तो सिंचाई पोली हाउस में किस प्रकार से किसान भाई को करनी चाहिए?
1: क्योंकि जब हम पोली हाउस के लिए आवेदन करेंगे उसी समय भी हमें अपने पानी का स्रोत जैसे ट्यूबवेल है, कुआ है, उसके बारे में जानकारी देनी होती है
0: जी।
1: और उसका प्रमाण भी देना पड़ता है। परंतु कई बार ट्यूबवेलों में ये पानी का पीएच 7 से लेकर के 8 तक होता है
0: जी।
1: तो वो उस खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे बढ़िया वर्षा का पानी होता है और उसके लिए फार्म बोर्ड सरकार हमें अनुदान भी देती है करीब 90,000 लाख के ऊपर, और जैसे जितना बड़ा बनाओगे उसमें ज्यादा अनुदान भी देती है
0: जी।
1: तो सबसे बढ़िया तो है कि हर पोली हाउस बनाने वाले को पहले उसकी स्कीम देख लेनी चाहिए कि हमें फार्म बोर्ड जरूर बनाना है और उसका पानी है उस सिंचाई के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी और फलों के लिए लाभदायक होता है।
0: तो खड़ी फसल में अगर किसान भाई सिंचाई करता है तो उसको किस प्रकार से सिंचाई करनी चाहिए? पोली हाउस में क्या व्यवस्था रहती है सिंचाई की?
1: सिंचाई की पोली हाउस में तो ड्रिप सिस्टम है, इसमें ड्रिप के द्वारा पाइपलाइनों से जो ड्रिप लगाई जाती है और उसमें एक वेंचुरी है, उसकी फिल्टर मशीन है, सब कुछ व्यवस्थित होती है। वो तो जिस कंपनी से अपन लगवाएंगे वो सारा ड्रिप सिस्टम और अंदर फोगर है कि उसके टेम्परेचर को भी बनाए रखना पड़ता है, माइक्रो टॉप्स है वो भी जो टॉप पर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए सिंचाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हम ड्रिप सिस्टम को, और ड्रिप सिस्टम में भी एक बार ड्रिप को काम ले लेते हैं एक सीजन में तो उसके बाद ड्रिप को फिर हमें साफ करनी चाहिए, साफ करके रखनी चाहिए और काम में ले तब भी साफ करके ही लेनी चाहिए। ये सावधानियां पानी के अंतर्गत हमें लेनी चाहिए।
0: जिन किसान भाइयों के पास में कुआ या ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, जमीन है, जो किसान भाई सिर्फ वर्षा के जल से पोली हाउस लगवाना चाहता है तो क्या ये उसके लिए संभव है?
1: फार्म बोर्ड बिल्कुल संभव है। इसमें थोड़ी जैसे सरकार का मापदंड है वो 20x20 वर्ग मीटर
0: जी
1: इंटू 3 वर्ग मीटर, परंतु हम इससे बड़ा अगर फार्म बोर्ड बना लेते हैं 50x50 और इंटू 5 मीटर गहरा, तो इससे 2 सीजन हम आराम से एक पोली हाउस में दोनों सीजन ले सकते हैं वर्षा के जल से। इससे फार्म बोर्ड से बहुत अच्छी सिंचाई होती है और बहुत अच्छा जल मिलता है, कोई प्रकार का प्रदूषण इसमें नहीं होता है
0: जी। और अब हम बात करना चाहेंगे आर्थिक लाभ के विषय में, तो आर्थिक दृष्टि से पोली हाउस और साधारण रूप से खेती करें तो उसमें कितना अंतर रहता है?
1: साहब, इसमें रात और दिन का अंतर है। जैसे 40 बीघा जमीन है अपने पास, 40 बीघा जमीन में किसान को 2-3 लाख 4 लाख से ऊपर नहीं मिलता है फायदा
0: जी।
1: जबकि एक पोली हाउस केवल 6 महीने में करीब 10 लाख रुपए तक खर्चा काट करके किसान आराम से कमा सकता है एक सीजन में। और दूसरी सीजन अगर उसको अच्छी मिल जाए, वो तो मैंने बताया ना भाई, हमें एग्रोनॉमिस्ट और कृषि विशेषज्ञ से जरूर जानकारी लेनी चाहिए कि उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती है
0: जी।
1: और उसकी रोकथाम के लिए भी हमें हमेशा जैविक दवाइयां ही काम में लेनी चाहिए, रासायनिक दवाइयों का कम से कम न के बराबर उपयोग लें। तो इसलिए यह साल में 15 लाख रुपए 4,000 वर्ग मीटर का पोली हाउस किसान को आराम से 15 लाख रुपए सालाना का दे सकता है।
0: कितने पोली हाउस आपने लगा रखे हैं उनसे कितना आर्थिक लाभ आपको सालाना हो जाता है सर?
1: देखिए सर, मैंने तो केवल एक पोली हाउस लगा रखा है और इसमें मैंने 2 साल तक तो पार्टनरशिप में दिया था
0: जी।

0: और इस दो साल से अब मेरा खुद छोटा लड़का है वो खुद खेती को संभालता है
1: जी।
0: तो पिछली सीजन में उसके जो है खर्चा काट करके 5 लाख रुपए बच रहे थे और अब दूसरी फसल और चालू है इसमें बढ़िया है तो शायद 5 लाख के लगभग इसमें बच जाएंगे। तो इसलिए 10 लाख रुपए सालाना की आय एक पोली हाउस से आराम से हो जाती है
1: जी।
0: मेरा किसान भाई से पुनः अनुरोध है कि वास्तव में हमें अगर आगे बढ़ना है किसान की आय दुगुनी तभी होगी, दुगुनी नहीं चौगुनी हो सकती है, परंतु इसके लिए हमें नवीन तकनीक को काम में लेने से और बड़ी श्रमसाध्य कमाई है ये। ये नहीं है कि आप ऑफिस में बड़े बड़े कलम से काम करते रहोगे, उससे नहीं होगा, केवल मेहनत करोगे तभी जाकर के आगे बढ़ोगे।
2: आदिति बहन अति चौकी जानकारी अपना जगदीश प्रसाद जी दिया, अति चौकी जानकारी अपना प्रभु भाई दे रहा, दुनिया देवा गणो गणो धन्यवाद। और अब धन्यवाद के साथ सुना एक चौको सो गीत
3: चालो सा।

0: और मैं साधन रूसा
1: निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा छोटा छोटा काका काका
0: निमुड़ा लाद दो निमुड़ा लाद दे मन लाए दे लाए दे

0: जाय पे माने ठगी नंदरा दिलाने पागला।
1: समदर खान की मीठी सी आवाज के मायने लोक रचना वारा पा सुनी। अब सा घड़ी की सुई इशारो करी छे कि आप सब सु विदा लेबा को बखत हो आयो है। तो देव अदिति ने
2: और विशाल ना आज्ञा
1: चालार करा।
3: राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब फिल्म संगीत के तहत आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महबूबा फिल्म का ये गीत किशोर कुमार का गाया हुआ। और अब लेकिन फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का है।

ये गीत आप सुन रहे थे येसुदास का गाया हुआ मान अभिमान फिल्म से। श्रोतों, अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम है लिबास, आवाज लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है।

श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत सुनिए गुलामी फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया हुआ यह गीत ओलामी फिल्म से आप सुन रहे थे। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, साथ ही दूरदर्शन की डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप प्रोग्राम सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, इसके बाद समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित होंगे। साथ ही 9:30 पर आकाशवाणी की

जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैंप के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े और भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानस सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी, और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुख करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। पहले समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान

0: किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथ ही गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
2: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपे की पा यू पो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षी कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एनसीकी रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिल इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। नेशनली स्पोर्ट्स कैन।
1: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए, और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अपने क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं, कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है सहयोगी विशेष। विशेष, ये बताइए कि कल भारत के लिए नजरें जो है किन खिलाड़ियों पे होने वाली है, खासकर सिंगल्स में।
3: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मणिपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मनविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफी उम्मीद होंगी।
1: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
3: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में ऋत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी, जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
1: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो है यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, खासकर पांडा बहनें काफी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहां पे श्वेत पर्णा और रूप पर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहां भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है, वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है, जबकि भारत की अंडर 18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो है चौथे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुक करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राजील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है,

0: शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनको उनसे उम्मीदें होती हैं दर्शकों को, उनके फैंस को, और अब तक 128 मैच खेल चुके हैं जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं, तो कोई दो राय नहीं कि बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल एफसी कल बर्नेल एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मैंगलुरु में होगा। यह प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ एसएफआई के तत्वाधान में किया जाएगा। और आईएसएल की बात कर लेते हैं, जहां आईएसएल फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहम्मदन एफसी को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स एफसी ने गोवा एफसी को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में एसआरटी 10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1: एसआरटी 10 और एल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
0: तो एक बहुत अच्छी बात यहां पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहां भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था वहां बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है।
2: We want our children to be successful, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हैं। ओके, सक्सेस इज नेवर गारंटीड, बट योर प्रेपरेशन एंड योर डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि टू टिक ऑल दोस बॉक्सेस, वो तुम्हारे हाथ में है।
0: जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे, और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल उद्यानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरे आंधियां उठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है, बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अन आर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपनी फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
3: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया, और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुंचूं, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, मैं क्रिकेटर बनूं। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तारीफ की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
0: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। श्रोताब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

अक्षय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप हेल्पलाइन नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक
2: में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
3: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
4: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
2: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कागज कलम नहीं।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रोग्राम आपके लिए लीजिए हाजिर है।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश। फिल्म वक्त से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, रवि की धुन है और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की गली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, ओपी नैयर का संगीत।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच।

21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ

0: धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ न कुछ नया सीख रहे

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक

समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किट में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

यह आकाशवाणी पासवाड़ा का एफएम माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनवाते हैं फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति फिल्म अनारी से। मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

सुनवाते हैं गीत फिल्म दोस्त से किशोर कुमार की आवाज में। शब्दों की लिखा है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

ये गीत भी आपने फिल्म धर्म करम से मुकेश की आवाज में सुना। सुनवाएंगे अंतिम गीत फिल्म संगीतकार मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती से। गीतकार हैं मयूर सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गीत अभी आपने फिल्म दोस्ती से मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। बोलते मजर सुल्तानपुरी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अभी नहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के FM माही चैनल से बोल रहे हैं, FM पेंडिक्स 1.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी का दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम गंडक 1.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:52 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।